ने किया दाती नौशी दातिन प्याचक हो गई ता हो गई ता हम बोश तो उसके नख चिल जाते बिहार तिन प्याचक अमीनी बात फ्रेश का चुकोचिया इता उदी या का गर चुकोचिया तिन प्याचक हिमेचु इता हो गई ता हमी का उसके नख चिन बेच जाते इता उस्ते गुनियान अली सुदी या के बजाते गोई संबिना ऐसा रिश्तीदान ता तिन प्याचक हो गई इता हो गई ता हमी का उसके नख चिन जाते Oftzaliaik inuren seko odeitsu date zelia egun aldi osun, eta tempeatxoak himetsu eta hogeita zazpiozken hartzen jatea.